तैनूं कोई रस्ते विच मिले, कोई तेरा मित्र, कोई यार, कोई संबंधी, तां तू हाथ जोड़ के उन्हूं कहना है नमस्ते। पर कई वारी देखी दे नमस्ते दा मतलब यह हुंदा है कि अगले

क्योंकि हरनाकश अपने पुत्र प्रहलाद नु कहंदा सी तू मेरा नाम जप क्योंकि मैं परमेश्वर हां। प्रहलाद कहंदा सी नहीं तू परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ओ है जिन्हें तेनू पैदा कीते, जिन्हें तेनू शक्ति दिती है। ता हरनाकश ने प्रहलाद नू पानी विच डोबन दी कोशिश कीती, आग विच साड़न दी कोशिश कीती, फिर खड़ गात विच फाड़ ली, प्रहलाद नू मारन

नारायण नारायण करना, पुत्र नारायण नारायण परमेश्वर का नाम भी। अंत वेले जमदूत आए, अजामल जेड़ा सी जमदूता नु देख के ते डर गया, पुत्र भुल गया ते कहन लगा नारायण बचा। नारायण के मनो जमदूत हट गए, देवते आए ता नामदेव जी कहंदे ने ओ अजामल पापी भी बैकुंठ नु चला गया, भावे सारी उम्र पाप कीते पर एक वाली नाम

तोते नू राम राम किया करदी सी, ओनू जपाया करदी सी, आप जपया करदी सी। अंत वेला आया, सप पिंजरे विच बह गया। पहला उसने तोते

बाल कातनी कपटे परी ओ पोतना कपट दी परी होई आई मारन वास्ते कृष्ण भगवान नु। कृष्ण भगवान ने

इंद्र जिहड़ा सी मन विच कुड़दा होया वापस इंद्रपुरी चला गया। गौतम ऋषि दा विआह अहल्या नाल होया, ए अपने टिकाने वापस आ गए। जीवन सुखां दा बतीत होण लग पिया, पर इंद्र मन विच कुड़दा रहा ते सोचदा रहा किसे

इंद्र देवता अपनी सभा ला के बैठे, कुछ सोच रहे है। ता लिखिया है कि इंद्र नु चिंता विच पिया देख के चंद्रमा भी कोल बैठा सी। चंद्रमा कहन लगा इंद्र

केसी कंस मथिन जिनकी है। केसी कंस मथन जिनकी है, भगत नामदेव जी बयान करते हैं। कंस कृष्ण भगवान का मामा सी, पर बड़ा जुलमी सी। कंस ने अपने पिता उग्रसैन नू कैद किया होया सी, आप राज कर रहा सी और जुलम कर रहा सी। और कंस ने ही कृष्ण भगवान नू मारन दे कई यतन कीते, पर कृष्ण भगवान ने कंस नू मारिया। कंस मरिया, पापी दा नाश होया। मथुरा दे लोकां ने खुशियां मनाईया कि कृष्ण भगवान ने इस पापी तों साडा खेड़ा छुड़ाया। पर कंस मरिया, मर के मुक्त हो गया, क्योंकि कृष्ण भगवान दे हथों मरिया सी, इस करके कंस पापी दा भी उद्धार।

प्यारे गुरुदेव सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द दे विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसनु पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गलबात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गलबात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने उसनु, तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपनड़े घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल दा इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाए उस ते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उस ते कोई असर नहीं हुंदा, उसमें पता ही नहीं लग गया की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनों कुछ किया जाए तो उसनों भी पता नहीं चल रहा तो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनों भी कोई पता नहीं चल रहा की किया गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हैं, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो जी फिर भी राम ना बैठे रहिए? वो तो वो गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना होई, जिंदगी उसे तरह की ही रही कि असि अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

गुरु अर्जन देव जी का मैं शब्द सुनाने लगा सी कि उन्होंने पाया है। हुण इस शब्द नूं तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल वजो रखण दा मेरा मतलब यह है कि यही स्टेट ऑफ माइंड गुरु अर्जन देव जी चाहते हैं, गुरु नानक देव जी चाहते हैं कि असी अचीव करिए, यही स्टेट ऑफ माइंड। तो ओ सुनो, कहते हैं पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया। मेरा मन भी शांत ठंडा, तन भी शांत ठंडा। हुण बंदा कहे तन दे शांत का मतलब की है? एयर कंडीशन लगा के तन नूं ठंडा किया है? नहीं, तन दे विच जिहड़ियां अग्गां बलदियां हन, तन दे विच कई किस्म दियां भुखां दियां अग्गां बल रहियां हन, डिजायर्स दियां अग्गां बल रहियां हन, कहिंदे ओह शांत हो गईआं हन। हुण तन सतौंदा नहीं है, तन परेशान नहीं करता है। ऑल द क्रेविंग्स हैव सीज्ड, तन बिल्कुल आराम च है। तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया। सतगुरु दे शब्द दे विच मैं कहिंदे समा गया हां, एकमिक हो गया। फिर कहिंदे हन लाथी भूख त्रिशन सब लाथी। वो कैसी स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच लाथी भूख सब भुख लिख गई है, त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल विसारी, कोई चिंता नहीं रह गई। वाह, कितनी वंडरफुल स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिथे कोई चिंता नहीं रह गई। चिंता सगल विसारी, कर मस्तक गुरपूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। गुरपूरे ने मेरे सिर उत्ते हथ रखिया है ते मैं अपने मन नूं जित लिया है। मन नूं जितन दे नाल कहिंदे सारा जगत ही जितया जांदा है। मन जीतो जग सारी। तृप्त अघाए रहे रिद अंतर, कहिंदे तृप्त अघाए रहे रिद अंतर, रिद अपने हिरदे दे अंदर रहना हां, डोलन ते अब चूके, कहिंदे हुण डोलना खत्म हो गया है। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नाही रे मूके, कहिंदे ओ खजाना अंदरों मिलिया है जिस दे विच कदे तोट आ ही नहीं सकी। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नाही रे मूके। ओ अवस्था है, ए अवस्था है जिहड़ी गुरु बाबा जी सानू चाहुंदे हन कि असां अपने ऐस जीवन च पा के जानी सी। ताहीं ते कहा कि तुसीं पाया की है, अंदले क्या पाया जागा, अपने अंदरों ये प्राप्त होनी सी। सो असीं अज दे इस कीर्तन दे विच जो कुछ सुनिया है इस उत्ते रिफलैक्ट करना है कि सचमुच असीं अपने जीवन दे विच अपनी अंदरली दुनिया दे विचों कुछ पा के जा रहे हां, जां हाले तक खाली ही बैठे, जां खाली ही बैठे हैं। और वो है सब कुछ इस काया दे विच ही। तां दास ने काया दे उत्ते कीर्तन शुरू कीते सी, तन दे उत्ते, बॉडी दे उत्ते, कि सानू पता लगे कि गुरु महाराज जी ने साडी बॉडी दे मुतलक, इस काया दे मुतलक, इस देही दे मुतलक की कुछ आख्या है। आप जी नूं मैं तीन नुक्ते सुना चुका हां। नंबर एक, दुर्लभ है एक काया, क्योंकि इस काया दे अंदर ही वो दुर्लभ वस्तु है जो असी पाउणी है। दूसरा, एक काया मंदिर है, अकाल पुरख वाहिगुरु इस दे अंदर निवास करता है। तीसरा, एक काया रब दी पत्नी है। ज्यो ज्यो इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर लै जाओगे, पत्नी का जीवन घुमला जाएगा, बीमार हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उदास हो जाएगी। अज एक चौथा नुक्ता आप जी के सामने रखता हां। गुरु महाराज जी आखते हैं कि जो कुछ सारे ब्रह्मंड दे विच है वो सारे का सारा इस काया के अंदर

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसको खोजने की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत च मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पावे, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवा नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ए जिहड़ी देही है एक घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है, इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इस नूं चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति कि इस दियां इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धुई फिरदियां हन, ओ खिची फिरदियां हन सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नूं हुण घोड़ी खिची फिरदी है, धुई फिरदी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा, घोड़ी किसे दे पास होवे उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू यह ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनूं किधर लैके जाना है। वो उसनूं रोकना चाहे वो रुके ना, किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इस नूं अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, ते इस नूं उस पासे वल जाण नूं वरतो जिस पासे वल जाण नूं तुहानूं हदायत कीती जांदी है, उस ट्रेजर लैंड नूं जो है एक्सप्लोर करन दी कोशिश करो जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दियो कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दियां आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इस नू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों, महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनूं मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नूं बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनूं बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जाती, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोले, तो ये पंक्ति आपनूं याद हो जाएगी। सब माया मोह
ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ, ਮਮਤਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਠੱਗੀ ਆਦਿ, ਵੈਰ, ਮੇਰ, ਤੇਰ, ਆਪਣਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਤਮਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਜੋ ਈਰਖਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਮਾਨੁੱਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੂਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਵਰ

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नु

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता, आख्या हम आदमी हां एक दमी, दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी ढेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगलां श्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुदबुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मौत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक सच्चे

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेड़ी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेका रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै लीजे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नू भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ। आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं। तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई, जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले दे दियो। तां जमदूता ने कहा ए श्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होण लगे। तां कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन इकट्ठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन की कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई। जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा, ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह

गुरु नानक सिटी पाछा बख्शिश कर दिया न भाई पही प्राप्त मानख दे होरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी परिया ए प्राप्त होए हन तेनू अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है पले पुरशां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर दी भक्ति कर ओदा कीर्तन कर ओदा जस कर ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा इस लई जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत जिन्हां नूं ए चंगे गुण प्राप्त हन भई उन्हां दा संसार ते आउणा सफल सफल हो जावेगा गुरु नानक सच्चे पातशाह।

और रामा बानी दादा दादा नीदा नीदा निबा धाबा धामा गा धामा बाबा धाबा धामा बाबा गा धामा रे दानी दादा नी रे रे दानी रे रे जानी जा रे जानी जा गा गा मा पा नी जा रे जा रे नी जानी जा गा गा मा गा रे जी गा रे जानी जा।

धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखा।

कवि केंद्र सुजान चंद मैं कवि हूं। हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह जिसने ऐलान किया।

जंगल विचों जड़ियां बूटियां लिया के दवाई बना के थोड़ी सेवा करा। वो पिंड के लोग खड़े होते ही हैं।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलना काटा है, सिमरन करता है,

भगत कबीर जी परमात्मा नूं मिलन दा एक बड़ा सुचज्जा ते सुंदर रस्ता दसदे ने। कहंदे ने हे भाई, जे रब नूं मिलना ते हउमै दा त्याग कर।

तारीफ करदे ने। आम चंगे चंगे विद्वान पुरुषां ने गुरु महाराज ने भी धरती नूं माता कहा है। धरती बड़ी चंगे सुभा दी है। भाई साहब कहंदे ने इदां दा सुभा बना लै।

जिन राम कहे कोई अल्लाह आख लगे कोई वाहे गुरु आख लगे कोई राम राम आखी जावे सब उस प्रभु दे नाम ने सतगुरां ने बाणी विच उस प्रभु नु किन्ने नामां नाल पकारिया है रब एक है प्रभु परमात्मा एक है ते ए दुनिया बखरे बखरे नामां नाल पकार दी है भी किस भी नाम नाल पकार लवो बस जेड़ा भी उसका नाम लवेगा वो तर जाएगा देवा पाहिन तारी ले राम कहत जन कछ न करे कोई हो जाए नहीं जिन्हें प्रभु का नाम लिया होवे तिना तरिया होवे जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शां कर रहे हैं नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

पुत्र ने जन्म लिया है ते पुत्र जन्म तो ही पिंगला है, हाथां ते पैरां तो हीण है। समा बीतिया मां गुजर गई, होर समा बीतिया ते इसदा पिता भी गुजर गया। सारे लोग आखन लगे भी ये बच्चा बड़ा ही कर्महीन है, हर कोई नफरत करने लगा।

अज इस पिंगले बच्चे नू चुकिया ते चुक के जंगल दे विच छड आए ने। आखन लगे हुण इत्थे रुल, असी देखांगे तेरा वाहेगुरु तेरा राम किवें तेनू प्रशादे छकाउंदा है, किवें तेनू पालदा है। भुख नाल मरेगा ते सैन तेनू साडी कदर आवेगी।

तू मेरा पुत्र है। समा बीतिया ए राजा बिरध होया ते ए बच्चा जवान हो गया। देखो नाम दिया।

जेदे पल्ले नाम है दुनिया दे सुख ओदे मगर मगर टुरे फिरदे ने। सतगुरु बाणी विच आख रहे ने लोक पर लोक दे सुख ओदे मगर टुर पैंदे ने। जेड़ा हिरदे विच नाम बसाउंदा है अज की होया राजा बिरद होया ते ए जवान होया राजे ने इस बच्चे नूं राज गद्दी ते बिठा दिता है। जेड़ी दुनिया सारी इस दे नाल नफरत कर दी सी पिंड नगरी वाले भैन भरा जेडे एडे धक्के मार दे सन अज सारे इस नूं एक बार मिलन दी खातर दरवाजे ते खलोते तर

एक महापुरुष इस बरसात विच तुरे जा रहे ने ते की देख रहे ने और सामने एक घर दिस रहा है। बरसात तो बचने लई इस दरवाजे दे कोल जाके खलोते ने भी घर किसदा है बेसवादा है। महापुरुष बाहर खलोते बरसात हो रही है सर्दी दी रुत है कंब रहे नी ते गनका ने दरवाजा खोलिया बाबा जी अंदर लंघ आओ अंदर लंघ आओ। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने नस के अंदर गई सतपुरख आए ने सेवा कर लवा नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई बाबा जी छक लवो। महापुरुष आखन लगे बच्ची तेरा काम की है की किरत कर दी है। बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है मैं कर्मा दी मारी बेसवा। आखन लगे बच्ची आ तेरे हथां दा दुध असां ने नहीं पीना इन्नी गलाखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए क्यों नहीं पीना तेरा कर्म माड़ा है जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ए दुध दा गलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारन वास्ते आंदे ने बाबा जी तुहाडी हर एक गल मन्नांगे। महापुरशां दे कोल एक पिंजरे दे

राम बोलेंगी ई भी बोलेगा, इनू राम राम सुखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरुषां ने दुध सकिया, हुण महापुरुषां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। भई ये है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जप हीन तप हीन कुल हीन कर्म हीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहे गुरु अल्लाह।

परम सरकार शासन। एक पवित्र शब्द धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का उच्चारण किया हुआ है। इस शब्द के विच साहब जी उपदेश करते हैं, जैसे एक आग दे चुल्हे दे विच लकड़ा बालिए अग बालिए लकड़ा नू हिलाइए ता अग दे छोटे छोटे चंगियाड़े उतां नू उड़दे हन। अग ते कोई है पर चंगियाड़े कितने ही उड़दे। जैसे एक आग दे जिस तरह एक आग तो जैसे एक आग दे कनुका कोट कोट कहते ने करोड़।

कोट करोड़। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, नदी ते एको ही है, पानी ते एको ही है, पर पानी दिया लहरा करोड़ा उठ दिया, पानी एको ही है पर लहर जद उठ दी है ते असी कह देने हैं नदी विच पानी दी लहर उठ गई, कह देने हैं लहर उठ दिया पईयां ने, लहरा है ते पानी विच है भी पानी, पर एक नाम पै गया पानी दी लहर, पर सासंगत वो लहर है ता पानी, पानी तो वख नहीं। आखो सतनाम से जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे, जिस तरह नदी विच पानी दिया लहरा उठ दिया ने, उन्हां पानी दिया लहरा नू असी पानी ही आखांगे, पानी तो ओवर।

और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साहबजादे इस शहर विच आए हैं, जिथे उन्हां कदम तरे उस शहर पवित्र हो गया। पर दूसरे पासे बदकिस्मती शहर दे इस वास्ते आखदा कि माता गुजरी और छोटे साहबजादिया सरहद के नवाब ने ठंडे बुरज विच कैद किया। कैद देखदा ते मन रोंदा है, दिल रोंदा है, अखां रोंदियां ने, पर जे माता जी और साहबजादिया के चरणा नूं देखा ते शहर ते वड्डे लगा पलिए लोके, हर पासे कर्फ्यू मार्शल ला लगा। माता गुजरी जी और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे ठंडे बुरज विच कैद हैं। बुरज की है? ऊंचा सारा एक मकान बने हैं सौखी समझ वास्ते, जगला है, एक पास्यों हवा आती है दूसरे पासे निकल जाती है। इस ठंडे बुरज विच माता गुजरी और साहबजादे कैद किए गए। मोती राम मेहरा कहन लगा, पलिए लोके, मेरा चित करदा है मैं साहबजादिया और माता गुजरी दुध पिया के आवां। घरवाली ने कहा, पत्ता पत्ता ते वैरी है, ठंडे बुरज के दुआले बड़ा सख्त पहरा है, उत्थे कोई नहीं जा सकता है। जे तुसी गए ते फिर जीवंदे वापस नहीं आवोगे, जे तुहानू कुछ हो गया फिर मेरा ते ना बच्चियां दा की होवेगा। ये दोनों जी बैठे आपस विच ये गल्लां पै करदे हन। औसा संगत

निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, हाय हाय, निर्धन को पाले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम। अज पंजवा वीरवार है, ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है, खालसा रहणी दा नाम है, खालसा अमली जीवन दा नाम है, खालसा गुणा दा नाम है। उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले, ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा, पहला चार तरह दा आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है, केवल बोल के लंघदे आं। अज पंजवा निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण, पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना, लोड़वंद दी बां फड़नी, दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे, ए भी निर्धन नू पालना। ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना, बड़ी बड़ी तप है, तप बहुत बड़ा तप है। तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना, चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू, अपने तो छोटे काम करन वाले नू, घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने, वो भी निर्धन नू पालना है। सत्संग अज पंजवा निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण। एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो, फिर महाराज पंजवा निर्धन नू पालन दी सेवा लैण।

मंत्र तेरो उस गुरु उस वाहिगुरु की पहचान करा का नाम है नार पहचान जय महाभयान तपत बहुत अगर कहने उस रस्ते जिथे बड़ा ओपरा जो रस्ता है उथे गर्मी भी बच आम कहते गर्म इतने गर्मी हो गई असि कई ओपरा देता तो उस गर्मी को बचने वास्ते ना कोई और कोई साधक इको साधक जय मां ध्यान तपत को धाम ते हर के नाम।

जित जाए बे मेरा सतगुरु। अज दा दिन महान दिन है क्योंकि अज दे दिन दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी ते वाकई कमाल है गुरु अंगद देव जी दा महान सेवा है। गुरु नानक देव जी चरणा दे विच रह करके इन्नी सेवा कीती के एक दिन गुरु नानक देव जी ने प्रसन्न हो करके ओ इलाही जोत जो गुरु नानक देव जी इस संसार दे विच ले करके आए सन ओ गुरु अंगद देव जी नूं दित्ती। परीक्षा भी बड़ी हुई ते हर कसौटी दे उत्ते गुरु अंगद देव जी पूरे उतरते रहे। एक दिन दी छोटी जी साखी मैं आप जी सामने रखन लगे। कुछ गल्लां इस तरह हुंदियां हन कि कई बारी गुरु देखदा मेरा सेवक किन्ना पक्का वाकई पक्का है के कच्चा है हाले क्योंकि कसौटी दे उत्ते उसनूं तोल रहे हन। परमासी दा दीवान है बड़ी ही संगतां गुरु महाराज गुरु नानक देव दे चन्ना दे विच पिंडां दे विचों शहरां दे विचों चल करके पुजियां हन क्योंकि पूर्णमासी दा दीवान लगदा है। बड़ा इकट्ठ होया होया बरसात लगी होई है लंगर दा कोई प्रबंध नहीं हो सके। संगत दे विच हुण बच्चे भी हन जो कि फुक दे मारे बिलाप कर रहे हन ते साथ संगत कई सेवादार ने जाकर के आख्या सच्चे पातशाह अज दो दिन हो गए लंगर दा तां कोई प्रबंध नहीं हो सकिया क्योंकि बरसात इन्नी पै रही है कि लंगर दा प्रबंध किस तरह कीता जावे। बच्चे बिचारे फूके विलाप कर रहे हन ते कुछ कृपा करो आप जी ते साध संगत नाल बैठे हन गुरु नानक देव जी दे दो साहिबजादे बाबा श्री चंद जी बाबा लक्ष्मी दास ते इन्हां नूं इशारा कीता सारी साध संगत बैठी हुई है कि जाओ ये जिहड़ा पेड़ है ना सामने इस दे उत्ते चढ़ करके हलूणा दे उस नूं हिलाओ इस दे विचों अनेक पदार्थ डिगणगे ते जदों ये पदार्थ डिगणगे संगत इस नूं छक करके संगतां दी तृप्ति हो जाएगी भोजन मिल जाएगा। ते साध संगत बाबा श्री चंद ने आख्या ये इस तरह भी कदे होंदा मैं पेड़ ते चढ़ करके हलूणा देवां ते पदार्थ डिगण ये तो हो ही नहीं सकता पेट दे विच्चों किथे पदार्थ आए हन मैं नहीं चढ़ता साफ इनकार कर दिता। दूजा बचन होया बाबा लक्ष्मी दास जी दे नाल उन्हां नूं आख्या भई तुसी कृपा करो इस पेड़ दे उत्ते चढ़ करके इस नूं हिलाओ इस दे विच्चों अनेक पदार्थ डिगणगे जिस नूं छक करके संतां दी तृप्ति हो जाएगी ते देखिया उन्हां ने भी साफ इनकार कर दिता कहिंदे इह हो ही नहीं सकदा कि पेड़ दे विचों पदार्थ डिगण पेड़ दे विचों लंगर मिले लोकां नूं छकण वास्ते हो सकदा उन्हां ने मना कर दिता। तीजे हन सेवादार उत्ते सेवा करदे हन भाई लहणा जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु बहुत पक्के सेवादार हन जदों इशारा कीता भाई लहणा जी तुसी कृपा करो पेड़ दे उत्ते चढ़ करके इस नूं हलूणा दिओ ते साध सिंह सत बचन कह करके पेड़ दे उत्ते चढ़ गए। ए पुछा नहीं ए मन दे विच विचार ही नहीं किता कदे हो सकदा कि पेड़ दे विचों पदार्थ डिगण ते संगतां दी छक्कर के तृप्ति हो जावे ए बचन ही नहीं किता ते सत बचन आ करके पेड़ दे उत्ते चढ़ गए। हुक्म मनिए होवे प्रमाण ता खसमे का महल पाए सी ते फिर कसवटी दे उत्ते पूरे उतरे साहिबजादे बैठे रहे अनेक एहो जी परीक्षा लई ते साध संगत जो देखिया कि ए सेवक पूरा है पूरा नहीं है कच्चा नहीं है ए पूरा है ते साध संगत उस वेले ही गुरु अंगद देव जी भाई लहणा जी तो अंगद बना दिता। आओ अज उना महान गुरु अंगद देव जी दा
अवतार पुरब दिहाड़ा है। आप सारे मिल करके यह जो है तुक सारे मिल

सब लोग सवार नमस्कार है पाए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जचन उपजायो आद्यों ते कै उतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो शत्रन को पलनो बद कियो कट कट के अंतर की जान पले बुरे की पीर पछानत चीटी दे कुंजर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद कर करा करतार प्रजा धरत तब दे अपार जब आकर कर दो कबू तुम्हें मृत दे तर सबू जेते बदन से सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिला अनाद असंभ

प्रत्परीय चुन चुन शत्र हमारे मरिय देख देख जग में दऊ चल राख आप मोहे और न दल तुम हम करो सदा प्रतारा तुम साहेब में दास्तार ज्ञान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा।

या बादशाह जहांगीर, गुरु का लंगर सब ले सांझा है। इत्थे भावे कोई हिंदू आवे, मुसलमान आवे, ईसाई आवे, जैनी आवे, बौद्धी आवे, जोगी आवे, सन्यासी आवे, ऊंच आवे, नीच आवे, धर्मी आवे, काफर आवे, पंडित आवे, चमार आवे, राजा आवे, कंगाल आवे, सिख आवे, सिख दा वैरी आवे, सब नू लंगर मिलदा है ते मिलदा रहेगा। तेरा पिता जलालुद्दीन अकबर भी तां इसे ही लंगर विच बैठ के प्रशादा छक के गया सी। जे अज तेरे पुत्र ने छक लिया तां केड़ा हनेर आ गया। बादशाह जहांगीर ने कहा, गुरु साहब, तुसी अपने किते जुल्मां ते इकबाल करदे हो, इस करके तुहानू 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। हजूर ने कहा, बादशाह जहांगीर, ए माया सारी गरीबां दी है ते जुर्माना एक कौड़ी भी नहीं दिता जा सकता। तब बादशाह जहांगीर ने कहा, गुरु साहब, मेनू पता लग्या है कि तुसा एक ग्रंथ लिखा है, तुहाडे बचन दा इको एक तरीका है कि तुसी उस विच हजरत मुहम्मद साहब ते इस्लाम दी तारीफ दे कुछ लफ्ज पा दियो तां तुहाडा गुनाह माफ कर दिता जाएगा, जे नहीं तां मरन वास्ते तैयार हो जाओ। तां हजूर ने कहा, बादशाह जहांगीर, ए ग्रंथ इलाही हुक्म विच लिखा गया सी ते संपूर्ण हो चुका है। हुण इस विचों ना कोई अक्षर कढ़िया जा सकता है ते ना ही पाया जा सकता है। हां, जिथों तक मौत दा सवाल है, सानू परवान है। जदों गुरु साहिब ने मौत परवान कर ली तां बादशाह जहांगीर ने यासा वा यासा दी सजा दा हुक्म दे दिता, जिस तों भाव है कि शरीर नूं इन्ना कष्ट दिता जावे कि शरीर खत्म हो जावे पर शरीर विचों एक तुबका भी खून दा बाहर ना निकले। बादशाह जहांगीर ने ए ड्यूटी चंदू दीवान नूं दे दित्ती। चंदू दीवान दी ड्यूटी लगाई जाण विच वी बादशाह जहांगीर दी एक चाल सी। उस चाहुंदा सी कि गुरु साहिब नूं किसे हिंदू कोलों शहीद करवाया जावे ताकि ओह खुद हिंदू परजा विच बदनाम ना होवे। उधरों चंदू दीवान ने भी केड़ी घट कीती। उसने गुरु साहिब नूं कई दिन जेठ दीआं धुप्पां विच खड़े रखिया, ना कोई रोटी दित्ती ना पानी। फिर एक उबलदी देग उबाल के गुरु साहिब नूं उस विच बिठाया गया अते फिर एक लोहे दी तवी गर्म करके गुरु साहिब नूं उस ते बिठा के सीस उत्ते तत्ता तत्ता रेता पाया गया। जिस तरह चंदू दीवान गुरु साहिब नूं बदल बदल के तसीहे दे रहा है, उस दर्दनाक दृश्य नूं आपदी सेवा विच इस तरह बयान किया जा रहा है।

जेठ दा महीना तत्ता तुप तत्ती रेत तत्ती मुगल सरकार तत्ती पर ठंडे कौन हन शांति दे पुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोमे गुरबाणी दे बोहित गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। किसे कवि ने ठीक ही किया है, इना अखा ने कई पतंगिया नू उंज ता लाटा ते सड़दिया देखिया है, मैं कई वेर चुप किते गुंचिया नू देगा विच भी कढ़दिया देखिया है, तत्ती रेत ते कई नमाजिया नू मैं कलमा यार दा पढ़दिया देखिया है, पर मैं की दसा अर्जन देव ताई किदा अग उते सड़दिया देखिया है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहन वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी, जदों उस नू किसे ने जाके दसिया ओए फकरा जाके अपने यार दी हालत ना देख, ता इस सुन के साई मियां मीर दौड़िया आया, आके की देखदा है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठे हुए हन, सारा शरीर छले छले होया पया है, पर मस्तक डलका मारिया है ते मुखों की कह रहे हन, तेरा किया मीठा लागे। ए सब कुछ देख के साईं मियां मीर ने गुरु साहिब नू सवाल कीता। मियां मीर ने पुछिया सतगुरां नू, तवी तपदी वांग तंदूर दाता और तन भर दिता सारा शालिया ने जिवें वेल ते गुच्छे अंगूर दाता, कोमल कलियां तो कूला रेशमा तो जिसम टलके होया मनूर दाता, और कल तख्त उत्ते ते अज तवी उत्ते एक ही खेल रचाए रब्बी नूर दाता, ते नाल ही हाथ जोड़ के बेनती कीती, महाराज मेरे कोलों तसीहे जरे नहीं जांदे, मैनू हुक्म दियो मैं अज ही लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट खड़का देंगा। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ी धीरता नाल पुछया, साईं जी ए शक्तियां कित्थों प्राप्त कीतियां? तां जवाब मिलिया, जी हजूर कोलों। तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, इन्हां शक्तियां नूं असीं वी तां वरत सकदे सी, पर शक्ति वरतना परमात्मा दे विरुद्ध बगावत करना है। साडे दो निशाने सन, असीं इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनियां सन। अगों हस के सतगुरु कहन लगे, तू फकरा रमज पछाणी नहीं, मैं तेरे दिल दी जान लई तू मेरे दिल दी जानी नहीं, मैं रखनियां है सन दो नीहां, एक शहीदी दी एक हरमंदर दी, ओ तू रखती ए मैं रखूं ए चाह है मेरे अंदर दी।